0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: हम सब कहते हैं कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन भरा हुआ है लालच के साथ। ये दिल मांगे मोर मोर एंड लॉट्स मोर। जरूरतों को तो किसी हद तक पूरा किया जा सकता है, पर ग्रीड को नहीं, बिकॉज दैट्स द कैंसर ऑफ द सोल। लालच रिश्ते बिगाड़ देते हैं। तो जब भी मन में कुछ जरूरत से ज्यादा पाने की तमन्ना जागे, तो अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछे। बट कैन आई अफोर्ड इट? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज आई गेट इट, विल दैट गिव मी पीस ऑफ माइंड?

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: मिट्टी है पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है हर दौर को महका जाएंगे हम लोग, हम रूहे सफर है हमें नामों से न पहचानो, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। है ना हकीकत कि चाहे हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा है हमारे नाम, फिर भी गौर से देखें कि कितने नाम आए और चले गए, बस जिंदा है सिर्फ वो ही नाम जो औरों को जीवन दे गए। कभी सोचें कि ऐसे नामों की लिस्ट में हम क्यों नहीं आए।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चाहे हम लोग जानते हैं कि हम औरों के साथ बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनइंटेंशनली या जानबूझकर, पर फिर भी मटेरियलिस्टिक इंसान है, आज के युग के इंसान है, मानेंगे थोड़ी। मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि ना गलत ये दुनिया है, ना है किस्मत गलत, जो लगे गलत सब कुछ तो है नजरिया गलत, है खुदा ने दिया जिंदगी में जो कुछ खास उसको यूं ही गलत कह के गंवाना ये है गलत।

हर दिन हम लोगों का अलग मूड होता है. कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब हम बहुत जीना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन वी जस्ट फील लाइक डाइंग. लाइफ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव हर अलग दिन के साथ. जब बहुत नेगेटिव फील करें तो आस ढूंढें. और आपको पता है कि ये जो आस होती है ना, ये अंधेरे से शुरू होती है, और एक बहुत जिद्दी टाइप की आस होती है जो अगर आपके नजरिए का हिस्सा बन जाए तो फिर सुबह कभी दूर नहीं.

I've read a very interesting article recently about the journey of life. राइटर लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, दूर अलग प्लेसेस में गए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की, हर दिन नए लोगों से मिले और फिर शाम हो गई। वो सड़क के एज पर खड़े थे, लग रहा था कि जैसे सफर खत्म होने को है, पर इतना ट्रैवल करके भी राइटर को वो नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। पता है वो क्या था? उनकी जिंदगी।

कहते हैं कि आप खामोशी में भी खामोशी से प्यार फील कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो कभी खामोश होता ही नहीं। एक जेंटल सी स्माइल, अ वार्म एंड टेंडर टच, कुछ अल्फाज एनकरेजमेंट के, खासकर उस समय जब आपको लगता है कि आप कोप नहीं कर सकते हैं, और अ वेरी सिंपल फ्रेज, लव यू, जब एक्चुअली आपके पास कोई भी नहीं होता, जब एक्चुअली आप सिर्फ उन्हें ख्यालों में ही मिलते हैं। ऑब्वियसली लव इज नेवर साइलेंट बिकॉज इट हैज सो सो सो मच टू से एंड गिव अवे।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: कई बार ढेर सारी बातें दबी रहती हैं जहन में, कई सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास हैं, उस खास इंसान के पास। पर होता यूं है कि कई बार हालात, कई बार जज्बात, बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम, पर ये दोनों चीजें कहने नहीं देती। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, मगर इस जुबान ने कहने ना दिया। कभी वक्त की खामोशी में खामोश रहे हम, तो कभी उनकी खामोशी ने कहने ना दिया।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ना हौसला ना इरादे बदल रहे हैं लोग थके थके से हैं फिर भी चल रहे हैं लोग ना वफा ना किरदार ना उसूल कोई ना जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग वाकई में इन चंद लाइंस में सच्चाई है द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज सिनेरियो इज हिडन अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता क्योंकि मुखौटे जो लगा कर घूमते हैं हम लोग चले बातें तो बहुत सी होती रहेंगी इंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक पहले

0: जरा जरा महकता जिस्म भी तो तेरा।
1: जिंदगी को सही तरीके से जीना है, जो सलीका है सबका इंडिविजुअल होता है, पर मैं ये मानती हूँ कि कभी गुजरे हुए वक्त को उलट कर देखो, आगे बढ़ना है तो पीछे पलट कर ना देखो। खूबसूरत सी नजर आती है ये दुनिया यूं तो, देखना है तो जरा नकाब उलट कर देखो। एंड फाइनली अपने वादों के अल्फाजों को ना भूलो कभी, और कहीं भूल जाने का अगर खौफ है तो उन्हें रट कर देखो।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: अपने आप को जब तलाशना शुरू करते हैं तो खुद को ढूंढते ढूंढते कई बार हम पहुंच जाते हैं आईने के पास। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। अब तो ले देकर वही शख्स बचा है मुझको मुझसे जुदा करके जो छिपा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि कौन हूँ मैं, पर इस बात पे खामोश है कि क्या खास है मुझ में।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज हर सिचुएशन को हम प्रैक्टिकलिटी का चश्मा पहन कर ही देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। दिमाग की बजाय दिल की बात सुननी पड़ती है, और चाहिए भी, क्योंकि जो दिल बातें सोच सकता है, फील कर सकता है, वो दिमाग के बस की बात नहीं। मैं जानती हूँ कि ये ख्वाब झूठे हैं और ये खुशियाँ अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए मेरे दोस्त कभी कभार कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी हैं।